कमसा जगा मिदिया मारुदाता है कमाल तो आप तुम्हीं दरु आप गुंडवार बगारं जाओ यान नालियां तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुम्हांगात बापु पुआ तंगियां गिला चपुआ